0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

0: सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6, यो हो जस्ट म्युजिक, नन स्टप म्युजिकल ब्रेक, जस्ट म्युजिक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का सीधा प्रसारण है।
2: एक अभागन की विपता दुख भरी सुन रहे हैं आप कल्पना की आवाज में।
1: सुर बिखेरा है शब्बीर अहमद,
2: निर्देशक है बॉस्को लेस्ली मार्टिस, बीबीपीएलएम।

0: Times FM 90.6.
1: टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ट्ज प्रत्येक दिन 12 बजे से 1 बजे तक नेवा पॉप

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक। संगीत लहर।
1: बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: कदमों पे निखार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिन्दी गीत संगीतको नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिन्दी गीत संगीतको नॉनस्टप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।
1: ए आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।

0: टाइम्स एफएम 90.6
1: यो हो सुगम श्रृंखला, उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा सुगम श्रृंखला।